एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुत प्रत्येक आइतबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म यहाँहरूकै शुभ सन्देश शुभेच्छा र प्रेरक प्रसङ्गका साथमा कार्यक्रम शुभ प्रभात सुन्न सक्नुहुनेछ मात्र एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz। कार्यक्रम भजन दीपाञ्जली प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz में। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हरेक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ। कार्यक्रम भजनाञ्जली प्रत्येक मंगलबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz।

0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो
1: भजन सुमिरन सुमिरन अध्यात्म ज्योति को यो प्रस्तुति का प्रायोजक शुद्धता को सुनौलो परंपरा जय माता दी गोल पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड।

गया तो वैसा का वैसा वापस न लौट सकेगा। तो एक ही उपाय है, वो कहता है ईश्वर नहीं है, धर्म सब पाखंड है। वो अपने को बचा रहा है, समझा रहा है कि ईश्वर है ही नहीं तो मंदिर जाना क्यों, ईश्वर है नहीं तो क्यों उलझन में पड़ना, क्यों ध्यान, क्यों प्रार्थना। मेरे देखे नास्तिक के भीतर आत्मरक्षा चल रही है। मैंने अब तक कोई नास्तिक नहीं देखा जो वस्तुतः नास्तिक हो। आदमी नास्तिक हो कैसे सकता है? नास्तिक का तो अर्थ हुआ कि कोई आदमी नहीं के भीतर रहने का प्रयास कर रहा है। नहीं के भीतर कोई रह कैसे सकता है? नास्ती में कोई जी कैसे सकता है? जीने के लिए हां चाहिए। नहीं में कहीं फूल खिलते? हां चाहिए, स्वीकार चाहिए। जीवन में जितना स्वीकार होता है उतने ही फूल खिलते, लेकिन सीमा के बाहर फूल न खिल जाए इससे भय होता है। कहीं फूल इतने न खिल जाए कि मैं उन्हें संभाल ना पाऊं। कल रात एक युवक ने मुझे कहा कि अब मुझे बचाएं, ये जरूरत से ज्यादा हुई जा रही बात। मैं इतना प्रसन्न हूं कि लगता है मैं टूट जाऊंगा। इतना आनंद है कि लगता है मैं संभाल ना पाऊंगा। ये मेरे हृदय का पात्र छोटा है, मुझे बचाएं। मैं इसके ऊपर से बाहर जा रहा हूं, ये मेरी सीमाएं सब टूटी जा रही हैं। और मुझे डर है कि अगर मैं इसके साथ बह गया तो फिर लौट ना पाऊंगा, नियंत्रण कहीं खो ना जाए। ये भय। अहंकार दुख के साथ भली भांति जी लेता है क्योंकि दुख में नियंत्रण नहीं खोता। कितने ही तुम रो दुख में, तुम अपने मालिक रहते हो। नियंत्रण खोता है आनंद में, सीमा टूटती आनंद में। दुख में कभी कोई सीमा नहीं टूटती, नरक में भी सीमा नहीं टूटती। तुम नरक में भी पड़े रहो तो भी तुम अपने भीतर मजबूत रहते हो। सीमा टूटती है स्वर्ग में, वहां नियंत्रण खो जाता। जहां नियंत्रण खोता वहां अहंकार खो जाता, जहां नियंत्रण खोता वहां बुद्धि की पकड़ खो जाती, तर्क का जाल खो जाता। वही हो रहा है, घबराना मत, तिरने का क्षण करीब आ रहा है। लेकिन सिर फिरे बिना कोई कभी तेरा नहीं। एक धुन की तलाश है मुझे जो ओठों पर नहीं, सिराओं में मचलती है, लावे सी दहकती है पिघलने के लिए। एक आग की तलाश है मुझे कि रोम रोम सीज उठे और मैं तार तार हो जाऊं, कोई मुझे जाली जाली बूंदे कि मैं पारदर्शी हो जाऊं। एक खुशबू की तलाश है मुझे कि भारहीन हो, हवा में तैर सकूं, हल्की बारिश की महीन बौछारों में कांप सकूं। गहराती सांझ के सलेटी आसमान पर चमकना चाहता हूं कुछ देर। एक सोख रंग की तलाश है मुझे, ओम प्रकाश वही सोख रंग मैंने तुम्हें दे दिया, ये गैरिक वस्त्र वही सोख रंग है। बहो, सीमाएं छोड़ के बहो, बुद्धि के पार बहो। जाने दो नियंत्रण। नियंत्रण का अर्थ है कर्ता, छोड़ो नियंत्रण। कर्ता अगर कोई है तो एक परमात्मा है, तुम परमात्मा से होड़ ना करो, उससे प्रतिस्पर्धा ना लो, उसके साथ संघर्ष मत करो, करो समर्पण। बहो उसकी धार के साथ, तिरोगे जो डूब जाते वही तिरते, जो तिरने की चेष्टा करते डूब जाते।

करने की एक विधि है, एक उपाय है, सत्य है यही, न तो विधि है और न उपाय। तुम्हारा ऐसा पूछना बचने की विधि और उपाय है, ये बात हमारा मन स्वीकार करने को राजी नहीं होता कि परमात्मा अभी और यही मिल सकता है। क्यों नहीं राजी होता? इसलिए राजी नहीं होता कि अगर अभी और यही मिल सकता है तो फिर हमें मिल नहीं रहा। तो इसका कारण क्या होगा, फिर इसकी व्याख्या कैसे करें? अगर अभी और यही मिल सकता है तो मिल क्यों नहीं रहा? बेचैनी खड़ी हो जाती, अभी और यही मिल सकता है, मिल तो नहीं रहा, तो इसे समझाएं कैसे? तो बड़ी अड़चन की बात हो गई। इस अड़चन को सुलझाने के लिए तुम कहते हो मिल तो सकता है लेकिन पात्रता चाहिए। बुद्धि रास्ते निकालती, जहां उलझन खड़ी हो जाती उसे सुलझाती। रास्ता खोजना पड़ेगा, पात्रता खोजनी पड़ेगी, शुद्ध होना पड़ेगा, तब मिलेगा। और अगर अष्टावक्र कहते हैं अभी और यही मिल सकता है तो जरूर इसमें कुछ कारण है। वो इसलिए कहते हैं ताकि तुम तीव्रता से प्रयास में लग जाओ, लेकिन लगना प्रयास में ही पड़ेगा। मन बड़ा होशियार है। अष्टावक्र की बात बिल्कुल सीधी साफ है, परमात्मा अभी और यही मिल सकता है क्योंकि परमात्मा कोई उपलब्धि नहीं है, परमात्मा तुम्हारा स्वभाव है। सारा जोर सीधा है, तुम परमात्मा हो, मिल सकने की बात ही गलत है। जब हम कहते हैं अभी और यही मिल सकता है तो इसका अर्थ इतना ही हुआ कि मिला ही हुआ है। जरा आंख खोलो और देखो, मिल सकते की भाषा ठीक नहीं है। मिल सकने में तो ऐसा लगता है तुम अलग हो और परमात्मा अलग है, तुम खोजने वाले हो वो खोज का लक्ष्य, तुम यात्री हो वो मंजिल। नहीं, अभी और यही मिल सकता है कि इतना ही अर्थ है कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। जरा अपने को पहचानो, आंख खोलो और देखो या आंख बंद करो और देखो, मगर देखो। थोड़े दृष्टि की बात है, पात्रता की नहीं। पात्रता का तो अर्थ हुआ है कि परमात्मा भी सौदा है। जैसे तुम बाजार में जाते हो तो कोई चीज 1000 रुपए की है, कोई 1,00,000 रुपए की है, कोई 10,00,000 रुपए की है, हर चीज का मूल्य है। तो पात्रता का तो अर्थ हुआ कि परमात्मा का भी मूल्य है। जो पात्रता अर्जित करेगा, मूल्य चुकाएगा, उसे मिलेगा। तुम परमात्मा को भी बाजार में एक वस्तु बना देना चाहते हो। त्याग करोगे, तपश्चर्या करोगे तो मिलेगा, मूल्य चुकाओगे तो मिलेगा, मुफ्त नहीं मिलता। तुम परमात्मा को खींच के दुकान पर रख देते हो, डब्बे में बंद कर देते हो, दाम लिख देते हो। तुम कहते हो इतने उपवास करो, इतना ध्यान करो, इतनी तपश्चर्या करो, धूप में तपो, सर्दी आतप सहो, तब मिलेगा। कभी इस पर तुमने सोचा कि ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे कुछ करने से परमात्मा के मिलने का संबंध हो सकता है। तुम जो करोगे वो तुम्हारा किया ही होगा, तुम्हारा किया तुमसे बड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारी तपश्चर्या तुम्हारी ही होगी, तुम जैसी ही दीन, तुम जैसी ही मलिन, तुम्हारी तपश्चर्या तुमसे बड़ी नहीं हो सकती। और तपश्चर्या से जो मिलेगा उसकी भी सीमा होगी, क्योंकि सीमित से सीमित ही मिल सकता, असीम नहीं। तपश्चर्या से जो मिलेगा वो तुम्हारे ही मन की कोई धारणा होगी, परमात्मा नहीं। अष्टावक्र कह रहे हैं कि परमात्मा तो है ही, वही तुम्हारे भीतर धड़क रहा, वही तुम्हारे भीतर श्वास ले रहा, वही जन्म है, वही विदा होगा, वही अनंत काल से अनंत अनंत रूपों में प्रकट हो रहा है। कहीं वृक्ष है, कहीं पक्षी है, कहीं मनुष्य है, परमात्मा है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इस सत्य की प्रतिभिज्ञा, इस सत्य का स्मरण। मैंने सुना है एक सम्राट अपने बेटे पर नाराज हो गया, उसे देश निकाला दे दिया। सम्राट

0: बेटा था, कुछ और तो करना जानता नहीं था क्योंकि सम्राट के बेटे ने कभी कुछ किया ना था, भीख ही मांग सकता था। जब कोई सम्राट सम्राट न रह जाए तो भिखमंगे के सिवा और कोई उपाय नहीं बचता, भीख मांगने लगा। 20 वर्ष बीत गए, भूल ही गया। अब 20 वर्ष कोई भीख मांगे तो याद रखना कि मैं सम्राट हूं असंभव, कष्टपूर्ण होगा, भीख मांगने में कठिनाई पड़ेगी। यही उचित है कि भूल ही जाओ, वो भूल ही गया था, अन्यथा भीख कैसे मांगे? सम्राट और भीख मांगे, द्वार द्वार दरवाजे दरवाजे भिक्षा पात्र लेके खड़ा हो, होटल में रेस्तरां के सामने भीख मांगे, जूठन मांगे, सम्राट सम्राट को भुला ही देना पड़ा, विस्मृत ही कर देना पड़ा, वो बात ही गई, वो जैसे अध्याय समाप्त हुआ, वो जैसे कि कहीं कोई सपना देखा होगा कि कोई कहानी पढ़ी होगी कि फिल्म देखी होगी, अपने से क्या लेना देना। 20 साल बाद जब सम्राट बूढ़ा हो गया उसका बाप, तो वो घबराया, एक ही बेटा था, वही मालिक था। उसने अपने वजीरों को कहा उसे खोजो और जहां भी हो उसे ले आओ। कहना बाप ने क्षमा किया, अब क्षमा होना क्षमा का कोई अर्थ नहीं, मैं मर रहा हूं, अब ये राज्य कौन संभालेगा, ये औरों के हाथ में जाए इससे बेहतर है, मेरे खून के हाथ में जाए, बुरा भला जैसा भी है उसे ले आओ। जब वजीर पहुंचे तो वो एक होटल के सामने पैसे पैसे मांग रहा था, टूटा सा पात्र लिए, नंगा था, पैरों में जूते नहीं थे, भरी दोपहरी थी, गर्मी के दिन थे, लू बहती थी, पैर जल रहे थे, और वो मांग रहा था कि मुझे जूते खरीदने हैं, इसके लिए कुछ पैसे मिल जाएं। कुछ पैसे उसके पात्र में पड़े थे। रथ आके रुका, वजीर नीचे उतरा, वजीर ने गिर के उसके चरण छुए, होने वाला सम्राट था। जैसे ही वजीर ने उसके चरण छुए, एक क्षण में घटना घट गई। 20 साल जिसकी याद ना आई थी कि मैं सम्राट हूं, फिर ऐसा थोड़ी लग रहा कि वो बैठा उसने सोचा और विचारा और तपस्या की और ध्यान किया कि याद करूं ना, एक क्षण में पल भी ना लगा, एक क्षण में रूपांतरण हो गया, ये आदमी और हो गया। अभी भिखारी था, दीनहीन, नग्न अब भी था, अब भी पैर में जूते ना थे, लेकिन हाथ से उसका पात्र उसने फेंक दिया और वजीरों से कहा कि जाओ मेरे स्नान की व्यवस्था करो, ठीक वस्त्र जुटाओ। वो जाके रथ पे बैठ गया, उसकी महिमा देखने जैसी थी, अभी भी वही का वही था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गरिमा थी, आंखों में एक दीप्ति थी, चारों तरफ एक आभा मंडल था, सम्राट था। याद आ गई, बाप ने बुलावा भेज दिया। ठीक ऐसा ही है अष्टावक्र जब कहते कि अभी और यही, तो वो यही कहते कितने, चलो 20 साल नहीं, 20 जन्म से देश निकाले पे रहे, भीख मांगी बहुत, भूल गए बिल्कुल, याद को बिल्कुल सुला दिया, सुलाना ही पड़ा, न सुलाते तो भीख मांगनी मुश्किल हो जाती, द्वार द्वार दरवाजे दरवाजे भिक्षा पात्र लेके घूमे। अष्टावक्र ये कह रहे हैं, आ गया बुलावा, जागो, भिखमंगे तुम नहीं हो, सम्राट के बेटे हो। अगर कोई ठीक से सुन लेगा तो घटना सुनने में ही घट जाएगी। यही अष्टावक्र गीता का महात्म्य है, महिमा है। कोई आग्रह नहीं कि कुछ करो, सिर्फ सुन लो, सिर्फ सत्य को पहुंचने दो तुम्हारे हृदय तक, बाधा मत बनो, ग्राहक रहो, सिर्फ सुन लो, पहुंच जाए ये तीर तुम्हारे हृदय में, इसकी चोट बस पर्याप्त, जन्मों जन्मों की विस्मृति टूट जाएगी, स्मरण लौट आएगा, तुम परमात्मा हो। इसलिए वे कहते हैं अभी और यही। अब तुम तरकीबें मत खोजो, तुम कहते हो शायद ये विधि होगी, उपाय होगा कि लोगों की त्वरा बढ़े, तीव्रता बढ़े। स्वामी योग चिन्मय ने पूछा है, चिन्मय के पास, चिन्मय की बुद्धि में चेष्टा, प्रयास, तप, जरूरत से ज्यादा है। साधारण योगी की जो पकड़ होती वैसी पकड़ है। ये अष्टावक्र के वचन साधारण योगी के लिए नहीं है, असाधारण प्रज्ञावान जो सुन के ही जाग जाए। चिन्ह में थोड़े हठ योगी, काफी पिटाई हो तो थोड़े बहुत चलेंगे, कोड़े को देख के उसकी छाया को देख के नहीं चल सकते। हंसना मत, क्योंकि चिन्ह में जैसे ही अधिक लोग हैं। हंसकर तुम ये मत सोचना कि तुमने हंस लिया तो तुम चिन्ह में से भिन्न हो, कि देखो तुम तो हंसे। चिन्मय ने कम से कम हिम्मत करके पूछा, तुमने पूछा नहीं, बस इतना ही फर्क है। हो तुम भी वही, ये अष्टावक्र की गीता पूरी हो जाएगी। और अगर तुम परमात्मा न हो गए तो समझ लेना कि वही हो, कोई फर्क नहीं। अगर इस सुनने सुनने में तुम जाग जाओ और परमात्मा हो जाओ तो ही कोड़े की छाया ने काम किया। सदा से खोजियों का यह अवलोकन रहा है कि परमात्मा उपलब्धि अत्यंत दुसाध्य घटना। खोजी शुरू से ही भ्रांत है। खोजी का अर्थ यह है कि वो मान लिया है कि परमात्मा को खोजना है, कि परमात्मा को खो दिया है। उसने एक बात तो मान ली कि खो दिया परमात्मा को, ये भी कोई बात हुई कि खो दिया परमात्मा को। परमात्मा को खो कैसे सकते हो? मेरे पास लोग आते, वो कहते परमात्मा खोजना, मैं कहता हूं चलो ठीक खोजो, लेकिन खोया कहां, कब खोया? वो कहते इसका तो कुछ पता नहीं, पहले इसका तो तुम ठीक से पता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि खोया ही ना हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चश्मा नाक पे चढ़ा है और उसी चश्मे से देख के चश्मा खोज रहे। कहीं ऐसा ना हो कि परमात्मा नाक पे चढ़ाओ और तुम उसी परमात्मा से खोज रहे हो, ऐसा ही है। खोजी बुनियादी रूप से भ्रांत है। उसने एक बात तो मान ली कि परमात्मा खो दिया है, या परमात्मा को अब तक खोजा नहीं, पाया नहीं, वो कहीं दूर है, उसे खोजना है। खोज से कभी परमात्मा नहीं मिलता। खोज खोज के तो इतना ही पता चलता है, खोजने में कुछ भी नहीं है। एक दिन खोजते खोजते खोज गिर जाती, खोज के गिरते ही परमात्मा मिलता है। बुद्ध ने 6 वर्ष तक खोजा, खूब खोजा, उनसे बड़ा खोजी और कहां खोजोगे। जहां जहां खबर मिली कि कोई ज्ञान को उपलब्ध है वहां वहां गए, सभी चरणों में सिर रखा, जो गुरुओं ने कहा वही किया। गुरु भी थक गए उनसे, क्योंकि गुरु उन शिष्यों से कभी नहीं थकते जो आज्ञा का उल्लंघन करते, उनसे कभी नहीं थकते, क्योंकि उनके पास सदा कहने को कि तुम आज्ञा मान ही नहीं रहे इसलिए कुछ नहीं घट रहा है, हम क्या करें। गुरु को बड़ी सुविधा है अगर तुम गुरु की न मानो, वह सदा कह सकता है कि तुमने माना ही नहीं, मानते तो घट जाता। मगर बुद्ध के साथ गुरु मुश्किल में पड़ गए। जो गुरुओं ने कहा बुद्ध ने वही किया। उन्होंने 1 शेर कहा तो बुद्ध ने 1.25 शेर किया। गुरु ने आखिर उनसे हाथ जोड़ लिया कि तू भाई कहीं और जा, जो हम बता सकते थे बता दिया। बुद्ध ने कहा इससे तो कुछ घट नहीं रहा है। उन्होंने कहा इससे ज्यादा हमें भी नहीं घटा है, तेरे से क्या छिपाना, तू कहीं और जा। इतने प्रमाणिक व्यक्ति के सामने गुरु भी धोखा न दे पाए। सब तरफ खोज के बुद्ध ने आखिर पाया कि नहीं, खोजने से मिलता ही नहीं। संसार तो व्यर्थ था ही, अध्यात्म भी व्यर्थ हुआ। भोग तो व्यर्थ हो ही चुका था, जिस दिन महल छोड़ा उस दिन व्यर्थ हो चुका था, इसीलिए छोड़ा। योग भी व्यर्थ हुआ, न भोग में कुछ है न योग में कुछ है। अब क्या करें, अब तो करने को ही कुछ ना बचा, अब तो कर्ता होने के लिए कोई सुविधा न रही। इस सूत्र को ठीक से समझना, न भोग बचा न योग बचा, न संसार बचा न स्वर्ग बचा। तो अब कर्ता होने के लिए जगह ही न बची। कुछ करने को बचे तो कर्ता बच सकता है, कुछ करने को न बचा। उसी रात घटना घटी। उस सांझ बोधि वृक्ष के नीचे वे बैठे तो करने को कुछ भी ना था। बड़ी हैरानी में पड़े। संसार छोड़ दिया था तो योग पकड़ लिया था, भोग छोड़ दिया था तो अध्यात्म पकड़ लिया था। कुछ तो करने को था तो मन उलझा था। अब मन को कोई जगह न बची। मन का पक्षी तड़फड़ाने लगा, कोई जगह नहीं। मन के लिए जगह चाहिए, अहंकार के लिए कर्ता का रस चाहिए, कर्तव्य चाहिए। कुछ करने को हो तो अहंकार बचे, कुछ था ही नहीं करने को। जरा थोड़ा सोचो, एक गहन उदासीन था जिसको अष्टावक्र वैराग्य कहते, वो उदय हुआ। योगी विरागी नहीं है, क्योंकि योगी नए भोग खोज रहा है। योगी आध्यात्मिक भोग खोज रहा है, विरागी नहीं है। अभी भोग की आकांक्षा है, संसार में नहीं मिला तो परमात्मा में खोज रहा है, लेकिन खोज जारी। यहां नहीं मिला तो वहां खोज रहा है, बाहर नहीं मिला तो भीतर खोज रहा है, लेकिन खोज जारी। भोगी विरागी नहीं है, योगी भी विरागी नहीं है। हाँ, उनकी खोज राग की अलग अलग है। एक बाहर की तरफ जाता है, एक भीतर की तरफ जाता, लेकिन जाते दोनों उस रात बुद्ध को जाने को कुछ ना बचा, ना बाहर ना भीतर। उस रात की तुम जरा कल्पना करो, उस रात को जरा जगाओ और सोचो कि कैसी वो रात रही होगी। उस दिन पहली दफा विश्राम उपलब्ध हुआ, जिसको अष्टावक्र कहते हैं, जो चित्त में विश्राम को उपलब्ध हो जाए तो सत्य उपलब्ध हो जाता। उस दिन विश्राम उपलब्ध हुआ। जब तक कुछ करने को शेष है तब तक श्रम जारी रहता, जब तक कुछ करने को शेष है तनाव जारी रहता। अब तनाव करके भी क्या करना, शरीर भी ढीला छूट गया, मन भी ढीला छूट गया। वो उस वृक्ष के नीचे पड़ गए और सो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो ऐसी खुली जैसी सबकी खुलनी चाहिए। सुबह जब आंख खुली तो पहली दफा खुली, सदियों सदियों से बंद थी वो आंख खुली। सुबह जब आंख खुली तो भोर का आखिरी तारा डूबता था। उस भोर के आखिरी तारे को उन्होंने डूबते हुए देखा। इधर बाहर भोर का आखिरी तारा डूब गया, उधर भीतर भी मन की आखिरी रेखा विसर्जित हो गई। कुछ भी ना था, भीतर कोई भी ना बचा। सन्नाटा था, शून्य था, विराट शून्य था, आकाश था। कहते हैं बुद्ध 7 दिन वैसे ही बैठे रहे, मूर्तिवत, हिले नहीं, डुले नहीं। कहते हैं देवता घबरा गए। आकाश से देवता उतरे, ब्रह्मा उतरे, चरणों में पड़े और कहा आप कुछ बोले। ऐसी घटना सदियों में घटती, बड़ी मुश्किल से घटती। आप कुछ कहें, हम आतुर हैं सुनने को कि क्या हुआ है। हिंदू बहुत नाराज है इस बात से कि बौद्ध कथाओं में ब्रह्मा को उतार के और बुद्ध के चरणों में गिरा दिया, लेकिन कथा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देवता भला स्वर्ग में हो आकांक्षा के बाहर थोड़ी। आज एक घटना घटी है कि एक व्यक्ति आकांक्षा के बाहर चला गया, तो बुद्ध के ऊपर कोई भी नहीं। बुद्धत्व आखिरी बात है, देवता भी नीचे हैं, अभी उनकी भी स्वर्ग की भोग की आकांक्षा है। इसलिए तो कथाएं हैं कि इंद्र का आसन डोलने लगता जब भी लगता है कोई प्रतियोगी आ रहा, कोई ऋषि मुनि तपश्चर्या में गहरा उतर रहा। इंद्र घबराता, आसन कपने लगता। ये तो आसन इंद्र का क्या हुआ, दिल्ली का हुआ। इंद्र का कहो कि इंदिरा का कहो, एक ही बात, इसमें कुछ बहुत फर्क ना हुआ। ये तो कोई आने लगा तो प्रतिस्पर्धा, घबराहट, बेचैनी। बुद्ध ना कुछ करके उपलब्ध हुए। जो बुद्ध के जीवन में घटा वही अष्टावक्र के जीवन में घटा होगा। कोई कथा हमारे पास नहीं, किसी ने लिखी नहीं, लेकिन निश्चित घटा होगा, क्योंकि अष्टावक्र जो कह रहे हैं वो इतना ही कह रहे हैं कि तुम दौड़ चुके खूब, अब रुको। दौड़ के नहीं मिलता परमात्मा, रुक के मिलता है। खोज चुके खूब, अब खोज छोड़ो। खोज के नहीं मिलता सत्य, क्योंकि सत्य खोजी में छिपा है, खोजने वाले में छिपा है। कहां भागते फिरते हो? कस्तूरी कुंडल बसे। लेकिन जब कस्तूरी का नाफा फूटता है तो मृग पागल हो जाता है, कस्तूरी मृग पागल हो जाता, भागता है, इधर भागता उधर भागता, खोजता है कहां से आती ये गंध, कौन खींचे ले आता है सुवास को, कहां से आती? क्योंकि उसने जब भी गंध आती देखी तो कहीं बाहर से आती देखी, कभी फूल की गंध थी, कभी कोई और गंध थी, लेकिन सदा बाहर से आती थी। आज जब गंध भीतर से आ रही तब भी वो सोचता है बाहर से ही आती होगी, भागता है, और कस्तूरी उसकी ही कुंडल में बसी है। कस्तूरी कुंडल बसे, परमात्मा तुम्हारे भीतर बसा है, तुम जब तक बाहर खोजते रहोगे योग में भोग।
1: हवस् त आदरणीय श्रोता, आजको यो प्रवचन श्रृंखला यति नै, यसको बाँकी अंश आगामी कार्यक्रममा सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।

0: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड क्लासिक में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी जबरदस्त गाने हैं, जबरदस्त किस्से हैं। ये जो बम्बई नगरिया है ना, मतलब हमारी फिल्म इंडस्ट्री दरअसल बम्बई नगरिया में ही पली बड़ी है, आगे बढ़ी है। तो क्या क्या दुर्घटनाएं, क्या क्या अच्छी घटनाएं घटी हैं, वो मैं आपके साथ बांटूंगा। लेकिन उससे पहले कल्याण जी, आनंद जी, अनजान, किशोर कुमार, अमिताभ बच्चन कुछ कहना चाहते हैं डॉन पिक्चर से, इसे सुनते हैं और फिर आपको बताऊंगा कि रफी साहब को हम वाकई फरिश्ता सिफत इंसान कहते हैं तो क्यों कहते हैं। एक बड़ी अजीब घटना घटी थी जिसने इस बात को साबित कर दिया कि उनसे बढ़कर कोई नहीं था। सुनाता हूँ कि सभी, लेकिन अभी यह बम्बई नगरिया, तू देख बबुआ।

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे?

हो सुन रहे हो लड़के, मैंने जब देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह, फिर दोनों के दिल धक धक धक धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह। हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गए।

आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा।

0: यानी प्यार हो गया।
1: दिस इज वीकेंड क्लासिक, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। ये आपने सुना फिल्म चलती का नाम गाड़ी से, और अभी जरा चलेंगे उस दौर में जहां पर एक बेहतरीन किस्सा हमारा इंतजार कर रहा है। रफी साहब, मोहम्मद रफी, द ग्रेट मोहम्मद रफी, उन्हें हम फरिश्ता सिफत इंसान क्यों कहते हैं? पता क्या हुआ, एक बारी इन्हें बैडमिंटन खेलने का शौक था, तो ये बैडमिंटन खेलने जाते थे हर सुबह सुबह। एक मरतबा ये वापस आ रहे थे, इनके साथी भी इनके साथ थे। एक आदमी इनके जान पहचान का दूर से भागा भागा आया और कहने लगा, रफी साहब जरा कुछ पैसों की जरूरत है, कुछ पैसे दे दीजिए। रफी साहब ने अपनी जेब टटोली और जितने पैसे थे निकाले और उस लड़के को दे दिए। तो रफ़ी साहब का जो साथी था ना, जो बैडमिंटन खेल रहा था इनके साथ, उसने कहा कि कमाल करते हैं रफ़ी साहब, पैसे गिन तो लेते हैं आप, बिना गिने दे दिया आपने, कमाल करते हैं आप। तो रफ़ी साहब ने कहा, कमाल तो आप करते हैं मियाँ, जब ऊपर वाला मुझे बिना गिने पैसे देता है तो मैं कैसे किसी ज़रूरतमंद को गिन के पैसे दे सकता हूँ, जो था उस वक्त दे दिया। अब ये बात रफ़ी साहब ही कह सकते थे कि जिसे कछूना चाहिए वो सहान के साथ कुछ चाहिए नहीं था, बस कला से प्रेम था, काम कर रहे थे, ज़रूरतमंद तक चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करते थे और परिवार की देख रहे, इसलिए उन्हें हम हमेशा फरिश्ता सिफत इंसान ही कहते रहे और कहते रहेंगे। अब जब इतनी सारी बातें गई हैं, एक गाना भी सुनते हैं ना फिल्म शागिर्द से, रफ़ी मियाँ की आवाज़ में, बड़े मियाँ दीवाने, ऐसे ना बनो, सिर्फ वीकेंड क्लासिक फिल्म।

0: तुम हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा जा आम
1: वीकेंड क्लासिक जैसा कि नाम है हर हफ्ते ये शो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमसे जुड़ते रहें, हम आपसे जुड़ते रहें और पुराने गाने सुनते रहें।
2: You are listening to Weekend Classic Radio Show.

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शटर्स मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: वो मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

0: दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहाँ होते हैं।
1: अरे वाह रे मजनू,
0: लैला लैला करेगा, लैला ओ लैला, लैला लैला करेगा, ठंडी आहें भरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत

0: तो बताओ हमको,
1: डूब मरो,
0: डूबेगा नहीं तरेगा, छप छप छप छप छप छप छप, डूबेगा नहीं तरेगा, प्यार से हम नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत करेगा।
2: पिक्चर का नाम है दिल्ली का ठग, यह वीकेंड क्लासिक, मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। और देखिए क्या हुआ, शम्मी कपूर साहब को एक बड़ा अच्छा स्कूल छोड़ना पड़ा, इसलिए नहीं कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने शरारत की थी, इसलिए क्योंकि उनके बड़े भाई राज कपूर ने कहा चल भाई स्कूल छोड़ दे। क्या हुआ था पूरा मामला सुनाता हूँ। हुआ यूँ कि भाई शम्मी कपूर साहब के परिवार में सभी लोग एक्टर्स, पृथ्वीराज कपूर खुद थिएटर के जबरदस्त एक्टर, सिनेमा के तगड़े एक्टर, तो हमेशा वो क्या करते थे, अपने परिवार के बच्चों को किसी न किसी नाटक में इस्तेमाल कर लिया करते थे। अब जो चाइल्ड आर्टिस्ट का किरदार था वो शम्मी कपूर निभा रहे थे। अब नाटक खत्म होता था रात को, देर रात को, सुबह नींद खुलती नहीं थी, आंखें सूजी सूजी रहती थी। शम्मी कपूर की टीचर ने कहा कि जाओ अपने पापा को बुला के लाओ। अब पापा जी, पृथ्वीराज कपूर के पास टाइम नहीं था, बड़े भाई राज कपूर पहुंच गए, जैसा कि अक्सर होता है। राज कपूर साहब ने कहा हाँ जी टीचर क्या हुआ, कहते हैं आप क्या कर रहे हैं, आपका भाई जो है वो उसकी आंखें सूजी रहती हैं, नींद पूरी नहीं होती उसे, क्या कर रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा जी कुछ नहीं, वो नाटक करते हैं तो इस वजह से होता है। तो टीचर ने कहा इसको बोलो कि या तो नाटक अटेंड करे या फिर स्कूल अटेंड करे, ये नाटक वाटक करता है पढ़ाई क्या करेगा, नाटक अटेंड करता है। थोड़ा डांट दिया, राज कपूर साहब को गुस्सा आया कि वो स्कूल जहाँ पे हमारी रोजी रोटी की इज्जत नहीं होती वहाँ पे मेरा छोटा भाई कैसे पढ़ सकता। राज साहब ने कहा शम्मी बस्ता फाड़ लाएं, मतलब बैग उठा ले और चल, स्कूल छुड़वा दिया और दूसरे स्कूल में जाके फिर एडमिशन कराया। जिस परिवार में इतना कमिटमेंट हो उस परिवार के लोग तो सुपरस्टार बनेंगे साहब। अब शमी साहब की बात हुई है, एक गाना सुनते हैं, गाना जरा जंगली बनेगा है, अब इन्हें कोई जंगली कहे तो क्या फर्क पड़ता है।
0: चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे।

0: रोज कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम प्यार।
1: You are listening to Weekend Classic.

साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। फिल्म का नाम खूबसूरत, जिससे आपने अभी गाना सुना, सारे नियम तोड़ दो, नियम से चलना छोड़ दो। और एक इंसान जिसने ऐसा किया है हमेशा, वो रहे शम्मी कपूर साहब। मरहूम शम्मी कपूर की याद आ रही है, एक बेहतरीन गाना सुनाऊंगा उनकी जिंदगी से जुड़ा। लेकिन अभी एक किस्सा सुनाता हूं। उनके जीवन में अजीब अजीब चीज़ें हुई, प्यार हो गया उनको गीता वाली जी से। प्यार गीता वाली जी से कहें बार बार जाके मुझे शादी करनी है, वो कहते नहीं मैं तो नहीं करूँगी। एक दिन बारिश वारिश हो रही थी तो इन्होंने फिर पूछा उनसे, मुझे शादी करनी है तुमसे, तुमसे शादी करोगी क्या? तो गीता जी ने कहा करूँगी, लेकिन अभी इसी वक्त। शम्मी साहब ने कहा ठीक है इसी वक्त चलते। इस वक्त वो पहुँचे तो सही, उस वक्त रात हो रही थी काफ़ी, मंदिर वंदिर कोई खुला हुआ नहीं था। लेकिन सुबह जब मंदिर खुला तो इन्होंने शादी की, सिंदूर भी नहीं था इनके पास। तो गीता जी ने अपनी लिपस्टिक इनको दी, इन्होंने लिपस्टिक खोली, गीता जी की मांग भरी और इस तरह से इनकी शादी हो गई। जीवन में जो कुछ करा इन्होंने ज़रा नियम कानून से हटके किया, और फिल्में भी वैसी करी। जानवर तो जंगली, जंगली का जिक्र आया तो ज़रा अय्या करूँ मैं क्या, सुक्कू सुक्कू कर लेते हैं और फिर कुछ बेहतरीन किस्से सुनते हैं। राइट नाउ रफी साहब की आवाज़ में ये गाना।

राम लखन से, माय नेम इज लखन, सुनाई दिया। आई एम क्वाइट श्योर आप भी थोड़ा सा मतलब तुम क्या आपने भी लगा लिए होंगे, गाना ही ऐसा है यार। गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं इस वक्त आप, लेकिन अभी जरा चलते हैं उस जमाने में जहां पर एक बड़ा अच्छा किस्सा मेरे सामने आता है। हुआ यूं कि किशोर कुमार ने नखरे दिखाए, पंचमदा फंस गए, उन्हें बचाने के लिए महमूद साहब को कूदना पड़ा। हाँ, आपको यकीन नहीं आ रहा, हुआ यूं कि बड़ा अच्छा गाना रिकॉर्ड हो रहा था, आशा भोसले जी वहाँ पहुँच गई थी रिकॉर्डिंग के लिए, पर किशोरदा नदारद उनको लोग फ़ोन कर रहे हैं, उस जमाने में मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे, तो घर पे फ़ोन कर रहे हैं, स्टूडियो में फ़ोन कर रहे हैं, पता चल रहा जी अभी आ रहे हैं, अब आएंगे। इतने में लोगों ने कहा कि यार महमूद तू क्यों इंतज़ार कर रहा किशोर कुमार का, ये गाना तो वैसे भी कॉमेडी गाना है, कॉमिक गाना है ये गाना, तो तू ही गा लेना। कहते मैं गा लूँ? कहते हाँ गा ले। बस जी उन्होंने गा दिया वो गाना, वाकई वो गाना हिट हो गया। महमूद साहब की बेसुरी आवाज़ में भी वो गाना बड़ा सुर में सुनाई देता है, क्योंकि उसमें जो अंदाज है, बयां है, वो बड़ा हंसाता है आपको। फिल्म कौन सी है? दो फूल। गाना कौन सा मैं बताऊंगा नहीं, आप सुन लो ना यार, आ गया गाना, सुनिए सुनिए, गौरव के साथ हैं आप।

आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें।

हाँ हाँ हाँ बहनों और भाइयों, आज गीतमाला की छाव में के दसवें और आखिरी पैक का पहला वॉल्यूम यानी नंबर 46 1979 की छाव में छुपे हुए फिल्म दूरियां के इस खूबसूरत गीत जिंदगी मेरे घर आना से शुरू हुआ है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आजकल गीतमाला की छाओं के पैक्स आने में इतनी देर लगने लगी है कि मैं, आप और दुनिया भर के संगीत प्रेमी तड़प कर कुछ इसी स्टाइल में गाने लग गए थे कि गीतमाला मेरे घर आना, जल्दी आना गीतमाला की छाओं। बहरहाल देर में सही, नवा पैक तो आखिर आपके पास पहुंच ही गया था और अब यह है गीतमाला की छाओं में का दसवां और आखिरी पैक। तो बहनों और भाइयों, आइए फिल्म दूरियां के उसी लाजवाब गीत के बड़े मधुर अंतरे भी सुन लें और बसा लें अपने मन में जयदेव की धुन, सुदर्शन फाकिर के बोल और भूपेंद्र और अनुराधा पौडवाल की आवाजें।

बहन और भाइयों, 1979 में भी यूं लगा था कि फिल्म संगीत का गोल्डन पीरियड यानी सुनहरा दौर अभी जोरों में चल ही रहा है। मतलब यह कि सालाना संगीत सीढ़ी तक न पहुंचने वाले छाओं के गीत भी बड़े ही सुरीले थे और हिट गीत भी बड़े ही मधुर। तो आइए अब 1979 की सालाना संगीत सीढ़ी की पायदान नंबर 35 से हिट गीतों का सिलसिला आज शुरू करता हूं। गीत था उस साल की एक बहुत सुपरहिट फिल्म का जिसका नाम था

और उस साल नंबर 34 पर भी एक गजब का जोरों में थिरकता हुआ गीत था, क्योंकि इस स्क्रीन पर गाने वाली हसीना एक डांसर ही थी, यानी रक्का।

0: और अब द ग्रेट गैम्बलर के इस गीत के बाद यहाँ बस एक और हिट गीत सालाना संगीत सीढ़ी का सुन लीजिए बहनों भाइयों, और इसके बाद हम और आप समय के चक्कर के कुछ आगे पीछे घूमेंगे। खैर पहले 1979 की पायदान नंबर 33 पर आप घूमिए मोटर में बैठकर और सुनिए गीत फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन का।
1: मन्नू भाई।

0: लहराएंगे, हल्ला मचाएंगे, खुल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बाजेगा ढम ढम ढम। हे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम।
1: ओके चलिए अब उतरिए 1979 की मोटर से, क्योंकि अब उससे 2 साल पहले की एक खास बात आपसे कहनी है। बहनों और भाइयों, गीतमाला की छाओ में के पिछले पैक में मैंने गीतमाला की सिल्वर जुबली के आलिशान फंक्शन के बारे में बहुत कुछ बताया था, आंखों देखा हाल, और उसमें ये भी बताया था कि कौन कौन से लोग उस 1977 में होने वाले बड़े ज़बरदस्त फंक्शन में फिल्मी लोग आए थे और कौन कौन नहीं आ पाए थे। ना आ पाने वालों में तेज

0: इतने बच्चे बच्चे ने गाया वो रेडियो से चला, पहले प्रोग्राम से लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया।
1: मगर बहनों और भाइयों, गीतमाला का पिछला पैक तैयार करके जब मैंने सारेगामा वालों को भेज दिया ना, तो फौरन खबर मिली कि 23 अप्रैल 2013 के दिन हम सब की प्यारी शमशाद आपा का इंतकाल हो गया, और वो बस अपनी शोले की तरह लपकती हुई आवाज की यादें हमारे पास छोड़कर हम

मैं हसीना तुम डाकू मैं हूँ शीशा तुम पत्थर शीशा पत्थर टकराने दो आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा तुम ना मानो तो जाने दो तौबा तौबा क्या होगा होना है जो वो होगा होता है जो

बहनों और भाइयों, ये तो आप जानते ही हैं कि गीतमाला की छाओ में के दसों पैक्स बने ही इसलिए हैं कि हम गीतमाला के हर साल के हिट गीतों को झलकों द्वारा याद करते हुए एक जोरदार सलामी उन अमर गीतों को भी देते चलें जिन्हें लोकप्रियता की मकबूलियत की धूप नहीं मिली, जो गुमनामी की छाओ में रह गए। जैसे उस साल का एक और बड़ा सुरीला गीत था बदनसीबी के सुरों में डूबा हुआ, आनंद बख्शी के तसव्वुर को लक्ष्मी प्यारे के सुरों की गहराई पेश करता हुआ फिल्म गौतम गोविंदा का गीत, जिसे देखिए किस जज्बाती अंदाज से गाया था हमारे किशोर दा ने।

0: गहरी बदनसीबी की एक और बात जो मुझे बहुत पहले कहनी थी वो भी देखिए, गीतमाला की छाओं के वॉल्यूम्स देर में आने की वजह से समय के चक्कर में उलझ कर रह गई। 12 जुलाई 2013 की रात खबर मिली थी कि इंतकाल हो गया उस लाजवाब फिल्म स्टार का, जो फिल्मों में तो ज्यादातर करख्त और धमाकेदार रोल किया करते थे, मगर जो जिंदगी में थे करोड़ों के दिलदार, यारों के यार, सबके प्यारे प्राण, जिन्होंने 93 साल 93 ईयर्स की उम्र में अपने प्राण त्यागे। प्राण साहब ने कई साल पहले एक लाजवाब इंटरव्यू दिया था मुझे बहनों और भाइयों, जिसके आखिर में मैंने उनसे गुजारिश की थी कि प्राण साहब अब कुछ राय उन नौजवानों को भी दीजिए जो नए नए आए हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में। तो देखिए उन नए नए लोगों को कैसी उम्दा राय दी थी प्राण साहब ने जाते जाते।
1: अमीन साहब, एक राय दूंगा जी, हालांकि मैं इस लायक तो नहीं हूं, कि उतार से कभी डरना नहीं और चढ़ाव से अपना दिमाग खराब करना नहीं।
2: वाह क्या बात।
1: क्यों कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री की लाइफ है इसका कुछ पता नहीं। और इसके बाद मैं ये कहूंगा कि अगर जिंदगी में कोई मुश्किल ना हो तो वो जिंदगी जिंदगी नहीं।
0: बहरहाल अब तो प्राण नहीं रहे, अब अपने आंसू पोछी बहनों भाइयों, क्योंकि गीतमाला की छाव अब फिर सालाना संगीत सीढ़ी के उजालों में ढल रही है। और साहब उस साल का गीत नंबर 32 फिल्म देवता के संजीव कुमार के रोमांस का चांद लिए बड़ी प्यारी सी अटखेलियों के साथ उभर आया था आपसे मिलने।

अच्छा भाई, उस साल आपके मशहूर हिट परेड प्रोग्राम गीत माला की 29वीं सालाना पायदान पर यानी 29 पर फिल्म सरगम के एक ऐसे गीत ने कदम रखा जिसने उसके अगले साल यानी 1980 में तो धमाकेदार धूम मचा दी थी, मगर वो धूम इसी साल यानी 1979 ही में शुरू हो गई थी। उस गीत में स्क्रीन पर जया प्रदा क्या खूब नाची थी साहब, और ऋषि कपूर ने अपने डैडी स्वर्गीय राज कपूर के स्टाइल में किस शान से बजाई थी डफली।

0: वैसे बैनर भाइयों, आपको याद होगा सरगम में जया प्रदा ने एक गूंगी लड़की का रोल अदा किया था और ये गीत एक ड्रीम सीक्वेंस, एक सपनों का दृश्य था। सरगम जया प्रदा की पहली हिंदी फिल्म होगी, मगर वो तेलुगु फिल्मों की तो बहुत ही मशहूर हीरोइन थी। वैसे बहनों भाइयों, तेलुगु बोलने वाले हिंदी उर्दू भी काफी अच्छी तरह समझ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं, और इसीलिए उन दिनों मैंने सरगम के सिलसिले में जया प्रदा का इंटरव्यू जब हिंदी ही में लिया था मद्रास के एक स्टूडियो में, तो सुनिए वो क्या बोली।
1: जब सरगम हिंदी में बनने के लिए बात हुई थी तो मैं रोल के लिए बिल्कुल तैयार थी, मगर मैं वही रोल पहले तेलुगु फिल्म सिरसिर मुवा में कर चुकी थी। उसे भी के विष्णा जी ने डायरेक्ट किया था। मुश्किल ये थी कि सरगम मेरी पहली हिंदी फिल्म थी। वैसे तो कुछ डायलॉग्स बोलने की जरूरत नहीं थी, पर औरंग के डायलॉग पर सही रिएक्शन देने के लिए जरूरत थी। आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से, विष्णा जी के डायरेक्शन से मैं कामयाब हो गई और मैं हिंदी फिल्मों में आ गई। आपने स्वीकार किया।

0: नेपाल टेलिकम को फाइबर इंटरनेट नया जडान गर्न तथा मर्मत गर्न घरमै बसी बसी 198 डायल गरे पुग्छ।
1: नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
2: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में।
3: और अब आ रही है बारी उस साल यानी 1979 की पायदान नंबर 28 की। फिल्म थी द ग्रेट गैम्बलर, और इस गीत में किशोर के साथ थी आशा भोसले।

0: दीवाना।
1: अच्छा आइए भाई, अब उस वर्ष की छांव से भी एक बार फिर प्यार कर ले हैं। एक जरा अलग सी फिल्म आई थी उस साल, नाम भी था उसका एक बार फिर, जो थी बड़ी ही खूबसूरत मगर ज्यादा चली नहीं बहनों भाइयों, इसलिए उसके गीत भी बड़े प्यारे होने के बावजूद गुमनाम से रहे। संगीतकार थे बड़े मशहूर बांसुरी नवाज रघुनाथ सेठ, और उनकी इस धुन में बोल पिरोए थे रेडियो और टीवी और स्टेज की दुनिया के बड़े गुणी राइटर डायरेक्टर और एक्टर विनोद पांडे ने। आवाजें भूपेंद्र और अनुराधा पौडवाल की।

अगला गीत भी छांव से उभर कर आ रहा है आपके लिए। फिल्म थी जनता हवलदार और बड़ा दर्द भरा सीन था उस गीत का। निर्दोष राजेश खन्ना खामखा एक झूठे इल्जाम में फंस जाते हैं, उन्हें सजा मिलती है और वो तड़प कर कहते हैं,

मजरू सुल्तानपुरी के इस दर्द भरे गीत को दुख भरी धुन से संवारा था राजेश रोशन ने, आवाज में गम घोल दिया था अनवर ने। जी हाँ, बहुत मशहूर तो नहीं हुए अनवर, लेकिन बहुत गजब के गायक अनवर हैं। मगर आप जानकर बहुत ही हैरान होंगे बहनों और भाइयों कि इस गीत की फिल्म के जो डायरेक्टर थे ना, वो कौन थे? कॉमेडी के शहंशाह महमूद। अरे बहन और भाई, कॉमेडी तो एक मेरे साथ भी हो गई थी गीतमाला की छाओ के पिछले पैक के साल में। दिसंबर 1977 में होने वाले गीतमाला के सिल्वर जुबली स्टेज प्रोग्राम की यादों में मैं इतना उलझ गया था कि आपको बताना भूल ही गया कि उस फंक्शन की तैयारी करने और फिर उसे अंजाम देने में मेरा तो भाई तेल ही निकल गया था। और मैंने अपनी बीवी रमा से कहा कि बाप रे, मैं तो थकन के मारे टूट चुका हूं भाई, चलो एक दो महीनों के प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग एडवांस में करके हम एक लंबी छुट्टी मनाते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और यूगोस्लाविया और ग्रीस, अमेरिका, कनाडा, सब जगहों के कई शहरों में घूमेंगे, अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलेंगे और वो तमाम रेडियो स्टेशन भी देखेंगे जहां जहां मैंने रेडियो प्रोग्राम्स एक्सपोर्ट किए हैं। तो रमा बोली, अरे भाई बाकी सब प्रोग्राम तो हमारे साथी भी संभाल लेंगे, मगर गीतमाला का क्या होगा? उसे तो हर हफ्ते नए सिरे से रिकॉर्ड करना पड़ता है ना, क्योंकि रेडियो क्लब्स की राय भी आनी होती है और रिकॉर्ड्स की सेल रिपोर्टें भी आनी पड़ती हैं। तो मैंने कहा भाई उसे भी हमारे सभी साथी बारी बारी से यहाँ संभाल ही लेंगे, और बड़े अच्छे अच्छे साथी हैं, बड़े काबिल लोग हैं। यहाँ विजय किशोर दुबे भी हैं और ब्रिजभूषण और जाहिदा भूषण भी हैं और मनोहर महाजन और रियाज सैयद भी हैं वगैरह वगैरह, उन्हीं पर सारा काम छोड़कर चल पड़ेंगे। और हम चल पड़े और गीतमाला के पुराने सुनने वालों को याद ही होगा कि किस तरह दो महीनों तक हमारे ये सभी साथी गीतमाला का प्रोग्राम करते रहे। मगर बहनों और भाइयों, एक खास बात आपको बताऊं कि बंबई से निकलने से बस चार ही रोज पहले मुझे अमेरिका से एक टेलीफोन आया जिसमें मुझे एक ऐसी खबर मिली कि जिसने मेरे उस टूर में एक हंगामा कर दिया।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्री इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यहाँ को विश्वासिलो र भरपर्दो वित्तीय सहयात्री। हमारा विशेषताहरू निक्षेप में आकर्षक ब्याज दर सरल र सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह देशभरि रहेका शाखाहरूबाट निशुल्क एबीबीएस कारोबार सुविधा सी आसबा सुविधा कारोबार को जानकारी दिन एसएमएस अलर्ट सुविधा निशुल्क चेक बुक तथा संपूर्ण रेमिटेंस सेवा केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड दिल्ली बजार गुर्जू को चौक काठमांडू।
2: टुगेदर वी डिलीवर।
1: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।
3: क्याप्टेन रेग्मीज फार्म हाउस
4: हिमाली दृश्यको अवलोकन सँगै प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउनको लागि स्वच्छ अनि रमणीय स्थान
3: क्याप्टेन रेग्मीज फार्म हाउस
4: पौराणिक नुवाकोट दरबार र बेलकोट गढी सँगै
3: काठमाडौँबाट मात्र 3 घण्टाको यात्रामा पुग्न सकिने
4: आफ्नै फार्ममा उत्पादन गरी दाउरामा पकाएका अर्ग्यानिक खानाका परिकारहरू
3: सेमिनार गोष्ठीका लागि उपयुक्त
4: स्कुल कलेजबाट एजुकेशन टुरमा जाने विद्यार्थीहरू लगायत बोटानिकल सम्बन्धी रुचि राख्नेहरूको लागि उत्कृष्ट स्थान
3: क्याप्टेन रेग्मीज फार्म हाउस कम्तानको बगैंचा बेलकोटगढी मदानपुर 12 देउराली
4: सम्पर्क नम्बर
3: 9841470164
4: 9032454
3: 9049528781
5: बहनों और भाइयों आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में खैर अब 1978 के उस वर्ल्ड टूर की बातें बहनों और भाइयों मैं करता हूं कट और फिर लौट आता हूं आज के वॉल्यूम के साल यानी 1979 में और जरा स्पीड बढ़ाकर आपको उस साल की संगीत सीढ़ी के कई गीतों की झलकें सुनवाता हूं फटाफट। तो ये रहा सालाना संगीत सीढ़ी का गीत नंबर 27।

0: और अब वार्षिक पायदान नंबर 26 की बाहों में आकर जरा सुनिए कि फिल्म बातों बातों में के अमोल पालेकर और टीना मुनीम ने कैसी मजेदार सरगोशियां की थी।
1: सुनिए
2: सुनिए
1: सुनिए सुनिए कहते सुनते बातों
0: मुनीम ने कैसी मजेदार सरगोशियां की थी।

0: उस साल की वार्षिक संगीत सीढ़ी पर राजेश रोशन बड़े जोरों में छाए हुए थे साहब। ये दोनों गीत जो अभी आपने सुने ना, यानी झलकों के रूप में, उनमें राजू का ही यानी राजेश रोशन का ही संगीत था और नंबर 25 की धुन भी उन्हीं की थी। फिल्म
1: One oh four eight.

0: சாவேல் சுச்சேபாடி
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: प्यालेस, सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू। फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

तो मोहब्बत के मारे झील किनारे प्यार की चांदनी में नहाते, हंसते खेलते मुस्कुराते, नहीं जानते थे कि जिंदगी क्या दिखाने वाली है। बस अगले ही मोड़ पर बिछड़ने की घड़ी आने वाली है, और फिर यूं हुआ

दूर हो गई कि जिंदगी आजमाती है, हंस के रुलाती है, लेकिन दिन बीते और वो फिर मिले मगर खुशियों के फूल नहीं खिले, क्योंकि वो जान नहीं पाए, वो मान नहीं पाए। दिल और धड़कन मिले तो, पर अफसोस एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। और अब ये हाल है

आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। अरे रे रे रे, इस धूम धड़ाकेदार जमाने में इधर उधर भाग दौड़ करने वालों, जरा रुक जाइए। हाँ, अमा 1972 के लाजवाब संगीत का दूसरा भाग शुरू हो रहा है आज गीतमाला की छाव में के वॉल्यूम नंबर 35 में। इसीलिए तो जरा थम जाइए, जरा ठहर जाइए। देखिए मीना कुमारी की पाकीज़ा यादें भी आपसे

0: कमाल अमरोही की अमर फिल्म पाकीजा के इस छांव में छुपे हुए गीत को तो मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने लिखा था, मगर खुद मीना कुमारी ने, जो कमाल अमरोही साहब की हीरोइन ही नहीं बल्कि बीवी भी थी, उन्होंने मुझे बताया था, जी हाँ, कि गीत से पहले जो चार मिसरों का कता था ना, उसे मजरूह साहब ने नहीं बल्कि खुद कमाल अमरोही साहब ने लिखा था।
1: जी हाँ, इसका वो कता कमाल साहब का ही लिखा हुआ है।
0: दोस्तों, ये कता तो आपने ठाड़े रहियों से पहले कई बार सुना होगा, पर आज जिंदगी में पहली बार इसे सुनिए एक नए रूप में, मीना कुमारी और लता मंगेशकर की जुगलबंदी।
1: चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है,
2: ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है।
1: आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद,
2: आज की रात बड़ी देर के बाद आई है।
1: आज की रात बड़ी देर के बाद आई है।
0: और इसी तरह जब बरसों बनते बनते रहने के बाद फिल्म पाकीजा मुकम्मल बन गई और उसकी रिलीज की रात आई, तो पाकीजा तो हिट हो गई साहब, मगर 31 मार्च 1972 ही की रात मीना जी ही दुनिया छोड़ गई। खैर बहनों और भाइयों, उसको तो जमाना हो गया, अब चलिए मेरे साथ 1972 की सालाना संगीत सीढ़ी के दूसरे हिस्से में। उस साल की पायदान नंबर 37 से 23 तक के गीत तो आपने पिछले वॉल्यूम नंबर 34 में सुने, और ये आई झलक गीत नंबर 22 की।
3: एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार,
4: पहले चीज का नाम बताओ,
3: देखो हम पर शक ना लाओ।

ये फिल्म थी बाबुल की गलियां, और उस साल के गीत नंबर 21 ने तो भाई धूम मचा दी थी साहब। उसमें एक नई गायिका आई और सारे संगीत प्रेमी जो थे वो बोल उठे, वाह क्या आवाज है, क्या तैयारी है।

0: फिल्म गुड्डी के इस शास्त्रीय संगीत में डूबे हुए गीत को बताइए किसने गाया था? जी हाँ, नए गायिका वाणी जयराम ने। और किसके लिए गाया था? यस, उन दिनों की नई सुपर अदाकारा जया भादुरी के लिए। और गुड्डी ही थी जया की सबसे पहले शुरू होने वाली फिल्म। खैर, गुड्डी के साथ साथ और उसके बाद में भी जया जी की तो कई फिल्में आईं और हिट होती ही रहीं। फिर वो जया बच्चन बन गई और आज तक हिंदी फिल्मी दुनिया में छाई हुई हैं। मगर गुड्डी जया का गीत बोले रे पपीहरा गाने वाली वाणी जयराम तो कुछ ही अरसे के बाद मुंबई के बॉलीवुड को छोड़कर मद्रास की फिल्मों में पहुंच गईं और वहां की अयो सुपर सिंगिंग स्टार बन गईं। अच्छा, वैसे गुड्डी के संगीतकार वो थे बैनोर भाइयों जिनकी शोहरत कुछ कुछ ढलने लगी थी तब तक, यानी गजब के सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर वसंत देसाई। उस साल एक और बड़े ही गुणी सुरों के जन्मदाता जयदेव की एक फिल्म आई पर ज्यादा नहीं चल पाई। मगर उस फिल्म मान जाइए कि एक और बहुत ही बढ़िया गीत के बिना तो हमारी गीतमाला की छांव अधूरी रह जाएगी। कौन सा गीत?
1: ये

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में। और साहब, अब मैं छाव से चुना हुआ एक ऐसा गीत पेश करता हूँ जो 1972 में तो ज्यादा नहीं चला, मगर उसके करीब 15 साल बाद से आज तक जब भी वो किसी रेडियो या टीवी स्टेशन पर बजता है ना, तो नौजवान लड़के लड़कियां खड़े होकर डांस करना शुरू कर देते हैं। आप भी करेंगे जरूर। गीतमाला की छाव में के इस पैक के कवर पर इसके जन्मदाताओं के नाम जरूर देखिएगा, मगर पहले गीत सुनिए जरा।

अरे बंगले के पीछे हो रही आपकी हरकतों को देखिए देखिए कोई देख रहा है। खैर कोई बात नहीं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो चलेगा। खैर साहब, वो साल 1972 भी आर डी बर्मन का साल कहा जा सकता है। उस साल आर डी बर्मन यानी पंचम की 10-11 फिल्में चली और इसके बाद लक्ष्मी प्यारे थे 9-10 फिल्मों के गीतों के साथ, और शंकर जयकिशन की 7-8 और कल्याण जी आनंद जी की 4-5 फिल्मों के गीत भी काफी चले। आर डी बर्मन की एक बड़ी हिट फिल्म कारवां के तो कई गीत चले थे साहब, मगर एक बड़ा ही स्वीट गीत जरा पीछे रह गया था छांव में। तो याद कीजिए अपनी महबूबा की मतवाली आंखें।

0: आइए फिर एक बार गीत बाला की छाव में
1: कारवां चलेगा बहनों भाइयों, वो उस साल की संगीत सीढ़ी के हिट गीतों की झलकों का कारवां है जिसमें कुछ सितारे भी साथ साथ चलेंगे। तो देखिए पायदान नंबर 20 पर थी गुलाबी जवानियां फिल्म जीत की।

0: और साहब अब जरा मुस्कुराकर हो जाइए तैयार, क्योंकि गीत नंबर 19 से पहले आने वाली हैं दो गजब की यादें। पहली याद है कॉमेडी के शहजादे महमूद की, उनके बचपन के बारे में।
1: बचपन में हम बहुत मस्ती वाला चोकरा था, बहुत मस्ती करता था। मेरा वजह से बहुत चोकरा लोग को तकलीफ हुआ, नुकसान हुआ।
2: अच्छा,
1: मेरा माँ उसके वास्ते बोले को बहुत मारता था, हम मस्ती वैसा करता था।
2: ओहो,
1: मेरा आँख के अंदर गरम मसाला, काली मिर्च और लौंग का मसाला लगा के फिर बेत से मेरे को मारता।
2: अरे वाह वाह वाह,
1: आप वाह वाह करता, जो दूसरे को सुनाता वो लोग तो रोता है कि अरे अरे बेचारा कितना मार खाता।
0: महमूद ने बचपन ही नहीं जवानी में भी बहुत सारी शरारतें की, मगर जब वो एक्टर से प्रोड्यूसर बने ना, तो उन्होंने कई और एक्टरों को स्टार बनने में पहला जबरदस्त सहारा भी दिया था, जैसे अमिताभ बच्चन को। जी हाँ, अमिताभ का मिलन महमूद से हुआ महमूद के छोटे भाई अनवर अली के जरिए, जिन्होंने अमित के साथ काम किया था ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी में। अनवर को अमिताभ का काम काफी अच्छा लगा था, तो उसने सोचा क्यों न सात हिंदुस्तानी का ट्रायल महमूद भाईजान को दिखाया जाए, अगर उन्हें अमिताभ का काम पसंद आया तो शायद वो किसी बड़ी फिल्म में नौजवान अमिताभ को बड़ा रोल दे दें। तो साहब महमूद बुलाए गए, सात हिंदुस्तानी का ट्रायल शुरू हुआ, और उसके बाद क्या हुआ ये आप अमिताभ बच्चन ही से सुन लीजिए ना।
2: खैर साहब, भाईजान के लिए फिल्म सात हिंदुस्तानी का ट्रायल रखवाया गया।
3: तो ट्रायल देखकर आपका काम उन्हें कैसा लगा?
2: यही सवाल मैंने डरते डरते उनसे पूछा, तो वो उछल कर कहने लगे, अरे मेरा घोड़ा जीत गया, मेरा घोड़ा जीत गया।
3: अच्छा,
2: मैं थोड़ा निराश हो गया कि मेरे काम के बारे में तो महमूद भाई कुछ कह नहीं रहे, बस अपने घोड़ी की ही फिक्र है उनको। लेकिन बाद में अन्नू ने मुझे बताया कि महमूद भाई आजकल दुनिया की हर चीज को घोड़े के रूप में देखते हैं, और जीवन का हर मोड़ उनके लिए रेस के समान है।
3: अच्छा अच्छा,
2: और वो मेरा घोड़ा जीत गया इसलिए बोल उठे थे क्योंकि उन्हें मेरा काम पसंद आया था और वे मुझे हीरो का काम भी देने वाले थे।
0: और भाई सचमुच बॉम्बे टू गोवा में महमूद भाई का वो घोड़ा बड़ी उछल कूद के साथ जीता, और उनका एक उछलता हुआ गीत उस साल गीतमाला में नंबर 19 तक पहुंच गया।

दोस्तों अमिताभ की वो पहली धमा चौकड़ी आपने देखी थी ना, तो अब चलिए उस साल की पायदान नंबर 18 पर और सुनिए और खुद भी गाइए फिल्म लाल।

अच्छा, उन दिनों एक मशहूर फिल्म के गीत 1972 और 73 यानी दो सालों के बीच बट गए थे, इसलिए दोनों ही बरसों में वो जरा नीचे नीचे ही रहे। एक तो इसके अगले साल नंबर 28 पर बजा, जिसे आप गीतमाला की छाओं के अगले पैक में शायद सुनेंगे, मगर 1972 में नंबर 15 पर था उस फिल्म का टाइटल सॉन्ग।

0: मेरा काम।
1: वैसे उस साल रणधीर कपूर की कई फिल्में आई थीं, जैसे जीत, जवानी दीवानी और कल आज और कल, जिसके वो डायरेक्टर भी थे। लेकिन जब उन्हें खबर मिली कि उन्हें रामपुर का लक्ष्मण में रेखा के ऑपोजिट काम करना है, तो आप जानते हैं रणधीर किस तरह अपने पेट नेम की तरह डब्बू बन गए थे। लीजिए उन्हीं से सुनिए।
2: जब मैं रेखा को पहली बार मिला, मैं बहुत नर्वस था।
3: वो क्यों?
2: क्योंकि सब लोगों ने मुझे कह रखा था कि वो बहुत खतरनाक है और मुझ जैसे भोले भाले लड़के को बेवकूफ बनाती है और यू नो।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर तुमने कैसा पाया उन्हें?
2: धीरे धीरे काम करने के बाद मुझे महसूस हुआ और मैंने जाना और उसे पहचाना कि वो बहुत सीधी सादी और भोली भाली लड़की है।
3: अच्छा
2: जी हाँ, रेखा बहुत अच्छी कलाकार है, फिल्मी दुनिया में भी और अपनी असली जिंदगी में भी।
1: और साहब, रणधीर कपूर की यादों से टकराने के बाद अब चलिए नेपाल, जहां वहीं की एक लोक धुन पर गाया जा रहा था फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गीत पायदान नंबर 14 पर।

बहनों भाइयों, जीवन कितना मधुर, कितना प्यारा, कितना सुखी होता है जब तक आशिक और माशूक शादी के बाद पति पत्नी बनकर एक दूजे के पूरक बनकर खुशी खुशी साथ साथ जीवन बिताते हैं। और अगर उस जोड़े में से एक चल बसता है ना, तो कितनी उदासी छा जाती है बाकी रह जाने वाले पर। इसका एहसास मुझे फिर एक बार हुआ जब इस वॉल्यूम नंबर 35 की रिकॉर्डिंग के दौरान फरवरी 2012 में मुझे मेरे एक दोस्त ने बेंगलोर से फोन करके बताया कि आपको पता है अमीन भाई, महीने भर पहले यहां बेंगलोर में महान गायक मन्ना डे की जीवन संगनी यानी हमारी सुलोचना भाभी का देहांत हो गया। मुझे धक्का सा लगा, मैंने फौरन बेंगलोर फोन किया उनके दुख में शिरकत करने। बड़े उदास थे मन्ना दा अपना 57 बरस का रिश्ता टूट जाने पर। और बहनों भाइयों, फिर मुझे याद आया 1972 ही की छांव का वो गीत जो लगता है जैसे शायद मन्ना डे ने अपनी इसी जुदाई, इसी सूनेपन का इजहार करते हुए आज दोबारा गाया हो।

बहनों और भाइयों, अब आगे बढ़िए मगर संगीत छेड़ी पर न जाइए, छांव ही में रहिए। यहां कुछ मूड बदलने की जरूरत है, इसलिए आइए झूम के सुने प्यार के सपनों का उसी साल का एक गीत, जिसकी धुन बनाई थी हिट संगीतकार प्यारे लाल के छोटे भाई गणेश ने, जो खुद भी बड़े गुणी थे पर कुछ कम चले।

दोस्तों, लाजवाब, मजेदार, सुमधुर, दिल को छू लेने वाले गीतों की कोई कमी नहीं थी उस साल भी। उनमें बहुत सारे तो गीतमाला में हिट हो गए और कुछ हमारी गीतमाला की छाओ के लिए बचे रहे। लीजिए एक बड़ा नाजुक सा गीत सुनिए, जिसकी फिल्म लाल पत्थर का एक और गीत आपने अभी कुछ देर पहले संगीत सीढ़ी की झलकों में भी सुना था।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में। अच्छा भाई, अब जरा जल्दी से हो जाएं 1972 की संगीत सीढ़ी की तीन झलकें। पायदान नंबर 13 पर था गीत फिल्म धड़कन का, जिसे दो हो जिया एक नहीं बल्कि दो मशहूर लोगों ने मिलकर लिखा था, एक तो प्रेम धवन और दूसरे फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर

0: रास्ता।
1: नंबर 12 पर था फिल्म अपराध का एक ताने मारता हुआ गीत,
0: हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं,
2: हमारे
0: हाँ तुम्हारे और कितने ठिकाने हैं,
2: कसम से किसी को नहीं मैं जानती,
0: अच्छा
2: और किसी को नहीं पहचानती,
0: अरे छोड़ो छोड़ो ये तो बहाने हैं, हमारे सिवा हाँ तुम्हारे और कितने दीवाने हैं।
1: और नंबर 11 का गीत था किस फिल्म में, आंखों आंखों में।

और कुछ बरसों के बाद हो गई शादी। इस फिल्म के हीरो गोरे चिट्टे गोल्डन बॉय राकेश रोशन की इसी फिल्म के मशहूर प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश की खूबसूरत और बेहद सुलझी हुई बेटी पिंकी से। और उसके बाद खैर बहनो भाइयों, आप सभी जानते ही हैं कि बाद में क्या क्या हुआ, बल्कि क्या क्या शानदार फिल्मी घटनाएं घटी राकेश रोशन के जीवन में। अभी तो 1972 ही में रहकर फिर चलिए उस साल की छाव में, जिसमें अब मैं ऐसा काम करूंगा जो गीतमाला की छाव में नॉर्मली नहीं करता, और वो ये कि एक ऐसा गीत पेश करूंगा

जो उसके अगले साल यानी 1973 में गीतमाला की सालाना संगीत सीढ़ी पर था जरूर, मगर बहुत ही नीचे था, यानी पायदान नंबर 35 पर। लेकिन गीत आया था 1972 में और इतना खूबसूरत गीत था वो, जो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है और पूरा पूरा बजने के काबिल है। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे ब्रिजभूषण, जहां ब्रिजभूषण याद है ना आपको नाम, जिन्होंने संगीत निर्देशन कम फिल्मों में किया मगर उनमें कई बेहद सुरीले नगीने पेश किए साहब। मगर वो फिल्में जरा छोटी यानी कम बजट वाली थीं और इसलिए ज्यादा नहीं वो चल पाईं और उनके लाजवाब गीत भी आए गए से हो गए। वैसे रेडियो टीवी और कमर्शियल फिल्मों में बोलने वालों में आज भी ब्रिजभूषण सुपरस्टार हैं और ये और इनकी बीवी जाहिदा उर्फ मधुर भूषण यानी मधुबाला की छोटी बहन, ये दोनों मेरे रेडियो यूनिट के राजा रानी समान हैं। तो भाई सुनिए ब्रिजभूषण की धुन में ढला हुआ वो गीत और याद कीजिए फिल्म का नाम।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: प्यालेस, सुक्रपथ न्यू रोड काठमाडौँ। फोन नम्बर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिङ
2: चिर परिचित यहाँ श्रेष्ठ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।